印度这里广播电台听众朋友们，请收听 Jyoti Das 唱的西蒙加拉邦的民间歌曲。

印度德里广播电台，下一首歌是阿里吉德辛格和尼奇达甘迪唱的，请收听。

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठपूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

0: Demikianlah saudara pendengar beberapa acara yang kami sajikan untuk Anda sekalian. Saudara pendengar, kami mohon agar para pendengar kami mengirimkan laporan dan saran-saran mereka mengenai daya penangkapan siaran kami ini di daerah mereka masing-masing, karena laporan-laporan seperti itu sangatlah membantu kami meningkatkan mutu siaran kami ini dan kami berusaha melayani Anda sebaik-baiknya. Harap Anda catat alamat kami untuk mengirimkan laporan Anda. Alamat kami adalah sebagai berikut, yaitu alamat pos L adalah sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi, air.indonesia313@gmail.com. Jangan lupa mengirimkan laporan Anda pada meja tugas kami di sini, yang ditunggu di sini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, komentar lagu, setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, spotlight, dan disusul oleh beberapa buah lagu filem, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Sebelum penyiaran, Daki Surdas bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे।

0: हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
3: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदले की राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में

0: या टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today, BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur. National Testing Agency says Answer Key Challenge system is designed to be fair to all students, rejects concerns of being expensive. US imposes fresh sanctions on Hezbollah, citing its ties to Iranian government. And in hockey, Indian women's team to take on Netherlands in the first match of second pool phase at FIH World Cup in Amstelveen today. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. More from our correspondent.
3: Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. The Prime Minister added that silos are not merely an organizational problem, but also a problem of mindset. He further urged officials to work with a spirit of belongingness, highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers. Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level, citing examples of experiences of the COVID-19 pandemic and the West Asia crisis. He said that such coordination mechanisms should become a natural part of the government's work culture. Mr. Modi also called for effective use of artificial intelligence while ensuring human intervention and for exploring innovative ways of combining the capabilities of AI with human expertise. Prime Minister concluded by reiterating the need for a whole-of-government approach, greater coordination, innovative thinking, and collective ownership to

0: Zhang Weiqing and Wang Chang of China. The duo defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarterfinals 21-23, 21-19, 21-17 in a nail-biting encounter. In the women's doubles, the Indian pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand will face fourth seeds Jia Yifan and Zhang Huying of China. The pair defeated 7 seeds Ring Iwanaga and Kii Nakashiki of Japan in straight games 21-16, 21-12 in the pre-quarterfinals. Astronomers have discovered an unusually dense giant exoplanet orbiting a star far beyond our solar system that challenges current theories of how planets were formed. The planet, named GJ523b, is about 150 million years old. It is more than 2.5 times wider and the radius roughly 2.55 times that of Earth. But it has an extraordinary mass, about 23 times the mass of Earth, while remaining predominantly rocky. The planet has been informally dubbed as Mega-Earth, a rare category of exceptionally massive and dense rocky worlds. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Pramod. Amit Shah slams Congress Working Committee's decision on two stanza Vande Mataram, reports Indian Express. Shah targets Congress on Vande Mataram, headlines the Pioneer. Almost all newspapers carry the story of former MP Sajjan Kumar passing away at a city hospital. The Hindustan Times says 42 years after anti-Sikh riots, Sajjan Kumar dies serving life term. And finally, a story in the Tribune says that Gandhi's 688 handwritten notes to freedom fighter Anand Hingorani has fetched a record 16.2 crores in action. And with that, it's back to you, Pramod.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to say...
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निजाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने ईरान की हुकूमत के साथ हिजबुल्ला के राब्तों का हवाला देते हुए मस्कूरा तंजीम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। और हॉकी में आज एम्स्टलफेन में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायशगाह पर मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल के इकदामात के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। इनमें बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, उमूर खारजा और गवर्नेंस शामिल हैं। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरियों से जोर देकर कहा कि वो इस बारे में तवील मुद्दती नुक्ता नजर के साथ गौर खोज करें कि मुल्क के मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: डेटा के मौसर इस्तेमाल और बेहतर हमांगी पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि डेटा एक कौमी असासा और मुस्तकबिल का वसीला है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि रुकावटें सिर्फ एक तंजीमी मसला नहीं है बल्कि ये सोच का भी मसला है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो अपने पन के जज्बे के साथ काम करें। अफसरान के दरमियान गैर रस्मी बातचीत और टीम स्पिरिट की तामीर की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने पॉलिसी साजी में ताज़ा तरीन ख्यालात लाने के लिए सरकारी शोबों, यूनिवर्सिटियों और नौजवानों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा राब्तों पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क की दिफाई सनअत को मजीद मजबूत बनाने और इसे आलमी सतह पर मजीद مسابقتی بنانے کی

0: जरूरत पर भी जोर दिया। कोविड 19 वबा और मगरबी एशिया के बहरान के तजुर्बात की मिसालें देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की हमांगी के तरीक़ेकार को हुकूमत के कामकाज के कल्चर का एक कुदरती हिस्सा बनना चाहिए। जनाब मोदी ने इंसानी मुदाखलत को यकीनी बनाते हुए मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल और इंसानी महारत के साथ AI की सलाहियतों को जोड़ने के नए तरीके तलाश करने पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने पेचीदा चैलेंजों से निपटने और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र के साथ भारत के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुकम्मल हुकूमत के नुक्ते नज़र, बेहतर हमांगी, जदीद सोच और इज्तिमाई मिल्कियत की ज़रूरत का इयादा करते हुए अपनी बात ख़त्म की। मीटिंग के दौरान सेक्रेटरियों ने शोबा जाति तरजीहात, उभरते हुए चैलेंजों और अमल दरामद के मसाइल पर अपने तजुर्बात शेयर किए। काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों और महकमों के सेक्रेटरीज और वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर हुकाम ने इस मीटिंग में शिरकत की। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने की बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि यह फैसला पार्लियामेंट की जानिब से मुरतब किए गए कानून की खुली खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और ये मुल्क मुखालिफ है। जनाब अमित शाह ने दावा किया कि 1937 में कांग्रेस ने खुशनूदी हासिल करने की खातिर वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर मरकजी सरकार ने इस तारीखी गलती की इसलाह करते हुए पूरे कौमी गीत को कानूनी एतबार से तस्लीम शुदा हैसियत दी। जनाब अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी की क्यादत में कांग्रेस पार्टी फिर से वोट बैंक सियासत के लिए खुशनूदी हासिल करने के रास्ते पर चल रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग के रुकने पार्लियामेंट राजू बिस्ता और सियाहत के वजीर शंकर घोष और दीगर ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जनाब अमित शाह आज सिलीगुड़ी में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर पर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब अमित शाह सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है, दो मीटिंगों में भी शरीक होंगे। दोपहर में वजीर दाखिला कवाखाली ग्राउंड पर भारतीय न्याय संहिता पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी और दीगर रियासती वुजरा उनके हमराह होंगे। इस नुमाइश में नए फौजदारी कानून के बारे में बेदारी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी और ये इस महीने की 26 तारीख तक जारी रहेगी। शाम में जनाब अमित शाह पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात करेंगे। पहाड़ी इलाकों और दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर कल दो जायजा मीटिंगें भी होंगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत आज पुणे में मवासलात के वुजरा की 12वीं ब्रिक्स मीटिंग की मेजबानी करेगा। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मीटिंग की सदारत करेंगे। इसमें ब्रिक्स रुक ममालिक के मवासलात के वुजरा और सीनियर नुमाइंदे शिरकत करेंगे और इत्तलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी, डिजिटल तब्दीली, इख्तरा और पायदार डिजिटल बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग का मौजू है एक पायदार मुस्तकबिल के लिए इख्तरा, इश्तराक और तब्दीली। वहीं ब्रिक्स की सदारत में, भारत की ब्रिक्स की सदारत में 2026 के तहत आज जयपुर में सियाहत के वुजरा की ब्रिक्स मीटिंग का आगाज होगा। ब्रिक्स रुकन ममालिक से सियाहत के वुजरा और सीनियर ओहदेदारान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मीटिंग में जिन अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें पायदार और जिम्मेदार सियाहत, हुनरमंदी के फरोग, बिना रुकावट सफर और सियाहत में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने कहा है कि आंसर की चैलेंज का निजाम इस तरह बनाया गया है कि सभी तलबा को इससे यकसां फायदा हो। एजेंसी ने इसके महंगा होने पर तशवीश को मुस्तरद कर दिया है। एनटीए का आंसर

0: कर दी जाती है। एनटीए ने कहा कि एक सवाल पर वसूल किए गए 200 रुपए की फीस मुतालिका चैलेंज के दुरुस्त ठहराए जाने पर उस उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। एजेंसी ने कहा कि हकीकी उम्मीदवारों से मुनाफा हासिल करने के लिए फीस नहीं ली जाती, बल्कि फिजूल के चैलेंजों की हौसला शिकनी के लिए यह फीस रखी गई है। उसने यह भी कहा कि किसी भी उम्मीदवार की तरफ से दाखिल किए गए सही चैलेंज से दीगर लाखों उम्मीदवारों का रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने हिजबुल्ला ग्रुप पर नई पाबंदियां आयद की हैं और उसे ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार दिया है। अमरीका के महकमा खजाना ने हिजबुल्ला को नकद रकम मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार एक नेटवर्क से मुबैन तौर पर वाबस्ता 10 अफराद पर पाबंदियों का ऐलान भी किया है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक रकम की मुंतकली के लिए मस्कूरा नेटवर्क ने लेबनान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कमर्शियल एयरलाइन परवाजों में सफर करने वाले कुरियर्स का इस्तेमाल किया ताकि गैर मुल्की करेंसी हासिल करने और पाबंदियों से बचने के लिए हिजबुल्ला को बाजाब्ता माली निजाम के बाहर एक रास्ता फराहम किया जा सके। हिजबुल्ला को ईरान का एक दरपर्दा ग्रुप करार देने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि मस्कूरा ग्रुप ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की ईमा पर काम करता है और वो कोई अलहदा तंजीम नहीं है। हिजबुल्ला और ईरान के पासदारान इनकलाब दोनों को अमरीका आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है। हिजबुल्ला लबनान की एक सियासी पार्टी होने के साथ साथ मुसल्ला ग्रुप भी है। सोमालिया के कज़ाकों ने गुज़श्ता 4 दिन में 2 बहरी जहाजों को अगवा किया है। इन वाकयात से इस तशवीश में इजाफा हो गया है कि बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में सोमालिया और यमन के नजदीक समंदर में कज़ाकी के वाकयात में फिर से तेजी आ रही है। सोमालिया के पंटलैंड साहिल के नजदीक इस हफ्ते कज़ाकों ने कैमरून के परचम बंदार जिस कार्गो बहरी जहाज को अगवा किया है उसमें सवार अमले के 10 अहलकारों में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इस बहरी जहाज में तुर्की के हथियार थे जिन्हें मवासलाती और सेटेलाइट साजो सामान के साथ मोगदीशु में फौजी तरबियत के एक मरकज ले जाया जा रहा था। अमले के अहलकारों में 6 भारतीय शहरी, तुर्की का 1 शहरी, जॉर्जिया का 1 और सर्बिया के 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश में बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक के साथ छींटें पड़ने और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में मौसमियात के महकमे ने आज आमतौर पर मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। करेलम के कई साहिली इलाकों में आज ऊंची ऊंची लहरें उठने के तनाजुर में समंदर में उथल पुथल रहने का इम्कान है। समंदरी उलूम की खिदमात से मुतालिक कौमी सेंटर के मुताबिक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुजा, एर्नाकुलम, मल्लापुरम, कोझिकोड और कासरगोड के साहिल के नजदीक समंदर में 1 से लेकर 1.5 मीटर ऊंचाई तक लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। हॉकी में आज एम्सलफेन में एफआईएच आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नीदरलैंड्स का सामना करेगी। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। इससे कबल भारतीय टीम कल पूल डी के अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ मैच बराबरी पर खत्म करने के बाद दूसरे दौर में पहुंची। इस मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। दोनों ही टीमें गोल का मौका बना पाईं लेकिन गोल करने में नाकाम रहीं। भारत ने दूसरे हाफ में इंग्लैंड के कई पेनल्टी कॉर्नर रोके। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मर्द खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी चीन के तीसरे दर्जे की जोड़ी का सामना करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सुर्खी है, भारत जापान दिफाई ताउन बढ़ाएंगे, बहरी सलामती के मुआहदे पर दस्तखत। अखबार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला मुल्क मुखालिफ और कानून की खुली खिलाफ वर्जी। अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान

0: को भी अहमियत दी है कि हुकूमत लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच कायम करेगी। झारखंड में कामयाब उम्मीदवारों को राहत इम्तिहानात मंसूख करने के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, यह खबर इनकलाब में सफ़े अव्वल पर है। अखबारात ने मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम के बांग्लादेश के नए सदर मुंतखब होने की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ गैर मामूली और तबाह कुन मौशी कार्रवाई का ऐलान।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरकजी सरकार के सेक्रेटरियों के साथ आला सतह की तीसरी मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम ने बंदिशें और रुकावटें दूर करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती नजरिया अख्तियार किए जाने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय कौमी गीत के सिर्फ दो अंतरे गाने के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। भारत आज पुणे में ब्रिक्स मुल्कों के मवासलात महकमे के वजीरों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा, जबकि ब्रिक्स के सेहत महकमे के वजीरों की मीटिंग जयपुर में होगी। और हॉकी में आज एम्स्टर्डम में FIH वर्ल्ड कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 16 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित निर्माल्या डे द्वारा द्रुपद धमर में गायन, राग रहेगा राग तोड़ी। आपके साथ संगत करेंगे पखावज पर पंडित दालचंद शर्मा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे राग तोड़ी में पंडित निर्माल्या डे द्वारा ध्रुपद धमर गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे पखावज पर पंडित दालचंद शर्मा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर।

0: सुबह के ठीक 9:15 होने को हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार रीमा यादव।
1: जब हम आजादी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है गांधी जी का। आजादी की लड़ाई में और उसके बाद भी उनके प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारकों ने अपने कार्यों और विचारों द्वारा भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किया। बापू कहते थे, अगर एक महिला जाग गई तो पूरा समाज जाग जाएगा, और ये महिलाएं सच में जागी। प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारकों में पहला नाम आता है कस्तूरबा गांधी, हमारी बा का। सोचिए, एक पत्नी जो पति के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत तक, जेल से आश्रम तक, हर कदम पर साथ चली। बा ने भाषण नहीं दिए, उन्होंने झाड़ू लगाई, बीमारों की सेवा की, आश्रम की रसोई संभाली और हजारों महिलाओं को चरखा चलाना सिखाया। बा ने हमें सिखाया कि गांधीवादी का मतलब है सादगी, सेवा और त्याग। वे गांधीवादी दर्शन की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। वे महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को ग्रामीण विकास का मुख्य आधार मानती थी। बा चली गई, पर उनकी सीख आज भी हर घर की दीवार पर लिखी है। साफ रहो, सच बोलो। दूसरा मुख्य नाम है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी का। वे कवियत्री थी, नाजुक थी, पर जब बापू ने आवाज दी तो वो शेरनी बन गई। 1930 में धरसाना में नमक कानून तोड़ने के लिए जब पुलिस लाठियां बरसा रही थी तो सबसे आगे कौन खड़ी थी? सरोजिनी नायडू। उन्होंने कहा था, अगर हमें आजादी चाहिए तो पहले हमें अपने घर की जंजीरें तोड़नी होंगी। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए और पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने गांधीवादी अहिंसा को महिलाओं की आत्मिक शक्ति से जोड़ा और माना कि महिलाएं स्वभाव से ही अहिंसक और नैतिक रूप से मजबूत होती हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और भारतीय हस्तशिल्प की पुनरुत्थान की प्रणेता। 1930 के नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के समय उन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करने के लिए मनाया था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना महिलाओं की मुक्ति अधूरी है, इसीलिए उन्होंने खादी और कुटीर

0: उद्योगों को बढ़ावा दिया। उनका एक ही मंत्र था कि गांव बचेगा तो देश बचेगा। मीराबेन मेडलिन स्लेट, ब्रिटिश एडमिरल की बेटी, जिन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत को अपना घर बना लिया। गांधी जी ने इन्हें मीराबेन नाम दिया था। इन्होंने गांधी जी के संदेशों को वैश्विक स्तर पर फैलाने का काम किया। वे पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्रबल समर्थक थीं। डॉक्टर सुशीला नायर, गांधी जी की निजी चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गईं। आजादी के बाद वे भारत की स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। उन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता और कुष्ठ रोग उन्मूलन को गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा माना। उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने गांधीवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया। वे आजीवन गांधीवादी दर्शन की शिक्षिका और विचारक रहीं और उन्होंने युवा पीढ़ी में गांधीवादी मूल्यों को रोपने का काम किया। राजकुमारी अमृत कौर, कपूरथला के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली अमृत कौर महात्मा गांधी की सचिव थीं। वे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और एम्स की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर बाल विवाह, पर्दा प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सुचेता कृपलानी, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। भारत विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी के साथ दंगा प्रभावित क्षेत्रों जैसे नोआखाली में शांति और पुनर्वास का काम किया। उन्होंने गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत को राजनीति और प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया। साल था 1942। सारे बड़े नेता जेल में थे। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान खाली था। तभी 33 साल की एक महिला भीड़ के बीच से निकलती हैं और तिरंगा फहरा देती हैं। वे थीं अरुणा आसफली। सरकार ने इनाम रखा पर वो भूमिगत रहीं। अखबार छापा, युवाओं को जोड़ा। अरुणा जी ने दिखाया कि अहिंसा का मतलब कायरता नहीं, सबसे बड़ा साहस है। अन्य उल्लेखनीय नाम, मतंगिनी हाजरा, जिन्हें बंगाल में गांधी बूढ़ी कहा जाता था, जिन्होंने तिरंगा थामे हुए गोलियां खाई थी। जानकी देवी बजाज, जिन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर अपने सारे कीमती गहने और विदेशी कपड़े त्याग दिए और खादी का प्रचार किया। तो इन सब में समान क्या था? मुख्य रूप से तीन बातें। पहली, सत्य और अहिंसा परंतु डर के बिना। दूसरी, सेवा मंच से नहीं जमीन पर। तीसरी, आत्मनिर्भरता, चरखा चलाओ, खुद कमाओ, खुद पढ़ो, उपभोग कम करो, पर्यावरण बचाओ, हिंसा का जवाब प्रेम से दो। ये सब बापू और इन महिलाओं ने 100 साल पहले ही कह दिया था। इतिहास हमें अक्सर बताता है कि देश किसने बनाया, पर सच ये है कि देश किन विचारों से बना, ये ज्यादा जरूरी है। और उन विचारों को सींचने का काम इन महिला गांधीवादियों ने किया। अगर आज हम सच में विकसित भारत चाहते हैं, तो हमें बाकी सेवा, सरोजनी का साहस, अरुणा की जिद और कमला देवी का स्वावलंबन अपनाना होगा।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार रीमा

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज 10:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ईमेल पर आधारित आपकी पसंद का कार्यक्रम, आपकी पसंद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल

रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी तो कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। मौसम सिर्फ बाहर का नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है, इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका घर आंगन के प्यारे से इस शो में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तब सबसे पहले ये खूबसूरत सा गीत आपकी नजर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म थी आशा। और आज आप सभी जानते हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और आज के दिन खास तौर पर ये विशेष कार्यक्रम के साथ साथ आज का दिन जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज बहुत सारे दिन हैं खास, लेकिन सबसे पहले खास बात हम करेंगे कि आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। जब हम बात करते हैं उन अनमोल लोगों की जिनके अनुभव हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो हमारे हैं वो वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और सीख की एक भरी खूबसूरत यात्रा है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने परिवार को संभालने और बच्चों को संस्कार देने और समाज को बेहतर बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज ज़रूरत है कि हम उन्हें केवल सम्मान ही ना दें, बल्कि उनका साथ भी निभाएं, उनके साथ कुछ समय बैठकर बातें करें, पुरानी यादें सुने, उनकी पसंद नापसंद जानें और सबसे ज़रूरी बात उन्हें महसूस कराएं कि वे आज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कई बार बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों या सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपनों के समय, प्यार की होती है। आपका कुछ मिनट उनके साथ बैठना उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आइए एक छोटा संकल्प लें। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनुभव की रोशनी और संस्कारों की खुशबू हमेशा बनी रहती है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, उनका हाथ थामें और कहें आप हमारे परिवार की ताकत हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे।

और दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि आज बहुत सारे दिवस हैं, तो पहले बात करते हैं आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जो हमें आतंकवाद के उन पीड़ितों की याद दिलाता है जिन्होंने

तार आतंक के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों को और अपने सपनों को खो दिया। इस दिन हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज के इसके शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। हमें अपने समाज में शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है। और साथ ही आज विश्व कवि दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें कविता की उस खूबसूरत दुनिया से जोड़ता है जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं, सपने और संवेदनाएं बन जाती हैं। कविता कभी खुशी की आवाज बनती है तो कभी दर्द को शब्द देती है, कभी प्रेम का इजहार करती है तो कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, और कभी समाज को एक नई सोच देती है। कविता की सबसे खास बात यही होती है कि ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, और वहीं दो पंक्तियां हमारे दिल की पूरी कहानी भी बयां कर देती है। लीजिए सुनिए हेमलता की आवाज में खूबसूरत सा गीत फिल्म है अखियों के झरोखों से।

और अब बात करते हैं कुछ विश्व उद्यमिता दिवस की। उद्यमिता सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि एक विचार को हकीकत में बदलने, जोखिम उठाने और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करने का साहस है। घर से शुरू किया गया छोटा सा काम भी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ एक बड़े उद्यम का रूप ले सकता है। हम अपने भीतर के उस विचार और हुनर को पहचानें जिसे हम अब तक टालते आए हैं। छोटा कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने सपनों को अवसर में बदलिए। और आज बात करते हैं लेखिका स्मृति चुगताई की जयंती की। आज हम हिंदी उर्दू साहित्य की ऐसी बेबाक और सशक्त लेखिका स्मृति चुगताई को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज की उन सच्चाइयों को सामने रखा जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते थे। उन्होंने आम जिंदगी और खासकर महिलाओं के अनुभवों को साहित्य के केंद्र में लाकर एक नई पहचान दी। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने के बदलाव की शुरुआत करने का माध्यम भी हो सकता था।

एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, बुजुर्गों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो हमारे बुजुर्ग होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। जो ढाल बन के खड़े होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब रिश्ते नाते होते हैं, वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब खुश होते हैं, वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जीवन में उन अनमोल लोगों की, जिनकी अनुभव और आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है, वो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने बुजुर्गों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जिन्हें कभी हमारी छोटी सी मुस्कान और खुशी देती थी, क्या आज हमारी कुछ मिनटों की बातचीत उन्हें खुशी नहीं दे सकती? क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि सम्मान, अपनापन और साथ की भी ज़रूरत होती है। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्से पूछिए और उनके अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ज़रूरतें कम नहीं होती, बल्कि प्यार और अपनापन पाने की चाह और भी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम संकल्प लेके अपने बुजुर्गों को परिवार का बोझ नहीं, बल्कि परिवार की ताकत समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका हाथ थामेंगे, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गीत, फिल्म थी हमारी तुम्हारी। दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।
1: अच्छा।

और अब बात करते हैं परिवार विघटन और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में रिश्ते तो हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद और बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने आपकी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वही उम्र के उस पड़ाव पर अक्सर अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है और रिश्तों को जोड़कर रखने की क्षमता भी है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन में भागदौड़, हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों को समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत अपने घर से करें और अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान प्यार दें, जिसके वे सच में हकदार हैं।

और अब बात करते हैं मौसम बदलने में बुजुर्गों के खान पान का भी रखें ध्यान। जी हाँ, बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब मौसम बदलता है, क्योंकि मौसम बदलते ही हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और ख़ासकर घर में बुजुर्गों के बदलते मौसम के साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें। प्यास कम लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। मौसम के अनुसार सूप, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी भी लिया जा सकता है। और खाने में ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर रहता है। दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दलिया और खिचड़ी जैसे पौष्टिक विकल्प भोजन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार और अत्यधिक मीठा भोजन कम करें। अगर बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी की दवा उनकी चल रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान में बदलाव करें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन लेने से भी बचें। और हाँ, भोजन का समय नियमित रखें। लंबे समय तक खाली पेट रहने की बजाय थोड़ी मात्रा में लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करना बेहतर है। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज़्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों की थाली में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी रखें ख्याल। तो स्वस्थ बुजुर्ग और खुशहाल परिवार।

दोस्तों, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो हमें सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। और इसी खूबसूरत वादे के साथ कि आप बुजुर्गों का रखेंगे खूब सारा ध्यान, और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलूंगी घर आंगन के अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक

0: पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रूपये का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के 2रे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhia said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। दोस्तों, सदाबहार नगमों की महक और ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के वो शानदार

किरदार जब भी रेडियो पर गूंजते हैं तो दिल पुरानी यादों में भर जाता है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिस मास्टरपीस के इस सुहाने सफर पर निकले हैं वो है साल 1958 में पर्दे पर आई सस्पेंस ड्रामा और जज्बातों से भरी क्लासिकल फिल्म काला पानी। देवानंद साहब की सदाबहार स्टाइल, मधुबाला जी की मुस्कान और नलिनी जयवंत जी का दमदार अभिनय और सचिन देव बर्मन यानी कि एस डी बर्मन साहब का अमर संगीत। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक खामोश और दर्दनाक सच से। नौजवान करण, इनको जब पता चलता है कि इनके पिता को बचपन से मृत माना जा रहा है तो वो पिछले 15 साल से कालापानी यानी कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये बात इस बच्चे के मन को झकझोर देती है, वो भी ऐसे कत्ल के जुर्म में जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। करण की रूह कांप जाती है, वो कसम खाता है कि वो अपने बेगुनाह बाप के माथे से कातिल का दाग मिटाकर रहेगा। फिर शुरुआत होती है सबूतों की तलाश। इस तलाश में करण अपना शहर छोड़कर हैदराबाद पहुंचता है। यहां उसकी मुलाकात होती है एक निडर और चुलबुली पत्रकार आशा से। करण आशा के घर में किरादार बनकर रहने लगता है। जहां एक तरफ करण अपनी गुप्त मुहिम में लगा रहता है, वहीं आशा की नटखट शरारतें और करण का अंदाजे बयां दोनों के बीच प्यार की एक मीठी सी चिंगारी सुलगा देता है और इस मीठी नोकझोंक के बीच फिजाओं में तैरने लगता है ये दिलकश नगमा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

क्या बात है। इस गाने में देवानंद साहब और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री हम अभी सुन रहे थे वो बहुत ही आनंदमय थी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। करण जब कत्ल की पुरानी फाइलों को खंगालता है तो उसे पता चलता है कि 15 साल पहले एक वेश्या की गवाही को बदलकर उसके पिता को फंसाया गया था और उस सच की चाबी आज भी उसी तवायफ किशोरी के पास है जो एक खत के रूप में मौजूद है। किशोरी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। करण अपना नाम और पहचान बदलकर किशोरी के कोठे पर कदम रखता है। वो एक रईस और आशिक मिजाज इंसान का नाटक करता है ताकि किशोरी का भरोसा जीत सके। किशोरी के महफिल में जब घुंघरू छनकते हैं तो एक अजब सी समा का एहसास होता है।

0: एंड शॉपिंग.
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
3: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
1: आई नो ना.
3: आरबीआई कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट.
5: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही फिल्म से. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. हमारे श्रोताओं, आपको बताइए, हम बात कर रहे हैं फिल्म काला पानी की और इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं खूबसूरत नगमे और इस फिल्म की खूबसूरत कहानी भी. कहानी के इस मोड़ पर नलिनी जयवंत जी का वो अधिकारी भरांदाज और आशा भोसले की वो मखमली आवाज, लेकिन कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है. करण तो किशोरी के सामने सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वो सबूत हासिल कर सके, लेकिन किशोरी सचमुच करण को अपना सब कुछ मान बैठती है. दूसरी तरफ करण अपनी प्रेमिका आशा से भी अपनी नजरें नहीं मिला पाता. करण खुद अंदर ही अंदर घुट रहा है कि वो अपने बाप की बेगुनाही साबित करने के लिए एक औरत के जज्बातों के साथ खेल रहा है. उसी कश्मकश, बेखुदी और दर्द में डूबा हुआ करण जब अपनी बेबसी बयां करता है तो मोम की तरह पिघल जाता है हर सुनने वाले का दिल.

मोहम्मद रफ़ी साहब की गाई ये गज़ल मजरू सुल्तानपुरी के लफ्ज़ और दादा बर्मन की धुन, सच माने श्रोताओं ये सिर्फ गाना नहीं रूह की पुकार है। अब आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक मोड़। किशोरी को जब पता चलता है कि करण उससे प्यार नहीं करता बल्कि वो तो सिर्फ उस खत के लिए आया था, तो उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। लेकिन जब उसे करण के पिता की बेगुनाही और करण की मजबूरी का पता चलता है तो एक औरत के निस्वार्थ प्यार को जगने में समय नहीं लगता।

श्रोताओं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। किशोरी अपनी जान जोखिम में डालकर वो असली खत करण के हाथों में सौंप देती है। उधर असली कातिल और शहर के ताकतवर लोग करण को मिटाने की साजिशें रचते हैं, लेकिन आशा और किशोरी के साथ इससे करण अदालत का दरवाजा खटखटाता है। अदालत में जब 15 साल पुराना राज खुलता है तो अंधकार छंट जाता है। करण अपने पिता को कालापानी के उस अंधेरे से निकालकर 22

तत्पर ही कराता है। अपनों के लिए किया गया संघर्ष और सच्चे प्यार की ये जीत हमें ये बताती है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सच का सूरज एक दिन जरूर उगता है। और इस अमर दास्तान के अंत में गूंजती है किशोरी के उस अधूरे प्यार की ये कसम।

अभी आपने काला फिल्म, काला पानी फिल्म का ये खूबसूरत नगमा सुना। श्रोताओं, आइए अब देख लेते हैं कि किन श्रोताओं ने हमें मेल पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये मेल तो हमें बहुत सारे आए हैं, कुछ खास मेल हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला मेल हम ले रहे हैं, ये मेल हमें भेजा है स्वर्ण सिंह ने, गांव लोगट ठाकुरावाला से। इनके साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला ईमेल हमें भेजा है संदीप मकड़ साहब ने। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। उषा मोहन, फारूक अली खान, राजकुमार डुड्डी, सुधाकर जाधव, अनिल मोहन, हीरामणि वर्मा, धर्मेंद्र चीपा, नितेश, सुदर्शन शाह, अनिल मोहन, रोहित विष्ट और संदीप मक्कर। तो आप सभी श्रोता जो हमें इस कार्यक्रम

हमें सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम इतनी शिद्दत से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी इस कार्यक्रम में हमें ईमेल के थ्रू भेजते हैं। आइए चलते चलते आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और नगमा।

0: श्रोताओं, ये थी 1958 की ब्लॉकबस्टर क्लासिकल फिल्म काला पानी। इसकी बेहद दिलचस्प, रहस्यमयी और जज्बाती दास्तां। उम्मीद है एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आपको मज़ा आया होगा। अगले हफ्ते हम यूं कहें कि कल फिर हाजिर होंगे किसी और फिल्म और अनोखी कहानी और सदाबहार नगमों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक मीटिंग दौरान भारत ते ब्राजील ने दूर संचार ते सूचना ते संचार टेक्नोलॉजियां विच सहयोग नूं होर डूंघा करन लई सहमति पत्र ते दस्तखत कीते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर नाल आर्थिक भाईवाली नूं डूंघा करन लई भारत दी वचनबद्धता ते जोर दित्ता है। सुप्रीम कोर्ट वल्लों एंट्री लेवल न्यायिक प्रीख्या लई 3 साल दी लाजमी कानूनी प्रैक्टिस नूं घटा के 1 साल कीता गया। दिल्ली पुलिस दे साइबर सैल ने अंतरराज्य डिजिटल गिरफ्तारी

0: दा एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टेलीमुवासलात के महकमे ने कहा कि इस मुआहिदे से डिजिटल इख्तिरा को फरोग मिलेगा, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में तआवुन को फरोग मिलेगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: पुणे में मुनाकिदा ब्रिक्स ममालिक के मुवासलात के वजरा की मीटिंग से अलहदा मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के मुवासलात के वजीर फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो ने इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट में कहा कि इस मुफाहमतनामे से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, सलाहियत साजी और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले से मुतालिक दो तरफा तआवुन में मजीद इजाफा होगा। इस शराकतदारी का मकसद दोनों मुल्कों में शमूलियाती महफूज और मजबूत डिजिटल इको निज़ाम को फरोग देना है। कौमुदी पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारत की ब्रिक्स 2026 की सदारत के तहत जयपुर में आज दोपहर ब्रिक्स सियाहती वुजरा की मीटिंग शुरू होगी। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के सियाहती वुजरा और सीनियर अफसरान इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें सियाहत के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग में पायदार और जिम्मेदार सियाहत, महारत पैदा करने और सफर को आसान बनाने, नीज सियाहत में मस्नूई जहानत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस वजारती मीटिंग से तवक्को है कि ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान सियाहत के शोबे में तआवुन को तकवीत मिलेगी और सयाहों की आमदोरफ्त में इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के अपने फैसले को आज तब्दील किया है। इसके तहत इब्तदाई सतह के कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने के लिए कानून के तलबा को 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस करना जरूरी था, जिसको अब 1 साल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एजी मसीह और के विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल एक बेंच ने 1-2 से ये फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि कानूनी खिदमात के इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवार जो 25 मई 2025 और 31 मार्च 2027 के दरमियान नोटिफाई किए गए हैं, इम्तिहान देने के मजाज होंगे। ताहम इन इम्तिहानात के जरिए मुंतखब किए गए उम्मीदवारों को पहले ट्रेनी जुडिशल अफसर के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा और उन्हें जुडिशल अकेडमी में 1 साल की तरबियत हासिल करना होगी, जिसके बाद मजीद 1 साल के लिए उन्हें क्लर्क के तौर पर काम करना होगा। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने पूरे एशिया और सिंगापुर के साथ इकतसादी साझेदारी को सनत से सनत के दरमियान मजबूत तालमेल पैदा करते हुए भारत के अज़्म को उजागर किया है। भारत सिंगापुर बिजनेस फोरम में सिंगापुर के एंटरप्रेन्योर्स और भारतीय ताजिरों और तिजारती स्कूल इनसीड के फारिगीन से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने भारत के तरक्की के सफर, सरमायाकारी मवाक़े और तिजारत के लिए पैदा की गई आसानियों को बढ़ाने की खातिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के तहत हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। जनाब गोयल ने सिंगापुर के खारिजी उमूर और तिजारत और सनत के वज़ीर मुमलिकत गान सीओ हुआंग और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से मुलाकात भी की। बरामद को फरोग देने की खातिर APEDA कम कीमत रोड शो के मौके पर यह मुलाकात मुनक़िद की गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। नई और काबिल तश्दीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजारत के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने पीएम कुसुम के अगले मरहले के रोडमैप के बारे में बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जोशी ने बताया कि कल इस मीटिंग के दौरान उन्होंने मजकूरा स्कीम के अगले मरहले में ज़रई शमसी तवानाई को मजीद फरोग देने के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पीएम कुसुम के जरिए अब तक 27 लाख से ज्यादा पंपों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 15.8 गीगावाट काबिल तश्दीद तवानाई की सलाहियत में इजाफा भी हुआ है, जिससे हर साल तकरीबन 806 मिलियन लीटर डीजल की बचत करने में मदद मिल रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि उन्होंने मुल्क में पॉली सिलिकॉन की तैयारी और शमसी साजो सामान के अंदरूनी मुल्क तैयारी का मजबूत और पूरी तरह मरबूत इकोसिस्टम तैयार करने के इकदामात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने छोटे और हाशिए पर रह रहे किसानों समेत सभी किसानों तक कम से कम इमदादी कीमत MSP के फायदे पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा बड़ा कदम है। ये स्कीम लोगों के दरमियान कीमतें मुस्तहकम करते हुए किसानों को दी जाने वाली कीमतों को यकीनी बनाने के लिए सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। किसानों की बहबूद और ज़िराअत के मरकजी वजीर ने बताया

0: कि इस स्कीम के तहत पिछले कुछ वर्षों में बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में इजाफा किया गया है। 2024-25 में इस स्कीम के तहत हकीकी खर्च तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए था, जिसमें इजाफा करते हुए 2026-27 में इसे 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान उधमपुर होते हुए एक तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करने जा रहा है। इस नई रेल खिदमत से मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी और जम्मू और कश्मीर के दो शहरों के दरमियान रेलगाड़ी की खिदमत में इजाफा होगा। मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का एक खत शेयर किया है। इस खत में जनाब वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर होते हुए जम्मू तवी और श्रीनगर के दरमियान एक तीसरी वंदे भारत के लिए मंजूरी दे दी गई है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने ईरान के खिलाफ इकतसादी धमकियों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इस तरह की नाकाम पॉलिसियों से ईरान के लोगों में मजीद नफरत पैदा होगी और ये पॉलिसियां मजीद नाकाम होंगी। इराकची का बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त इकतसादी इकदाम की धमकी के बाद सामने आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास इराकची ने कहा कि इन धमकियों का मकसद अमरीका के अवाम की मुल्क के अंदरूनी माली मसाइल से तवज्जो हटाना है। उन्होंने कहा कि अमरीका की इकतसादी दहशतगर्दी से आलमी मईशत और दुनिया भर के ममालिक की अपनी खुद मुख्तारी को खतरा लाहिक है। इससे कबल अमरीका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कल कहा कि ईरान दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इकतसादी तौर पर अलग थलग किए जाने का सामना करेगा। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने उन ममालिक और कंपनियों को इजाफी बंदिशों की धमकी दी थी जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका के इत्तेहादी अपने मौकिफ के ताल्लुक से फैसला करें। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी जांच के बाद आज सुबह फिर से रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की तामील करते हुए इमरान खान को आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। हॉकी में आज एम्स्टलफिन में FIH आलमी कप के दूसरे पूल मरहले के पहले मुकाबले में भारतीय खवातीन टीम नेदरलैंड्स का सामना करेगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पुणे में ब्रिक्स ICT मीटिंग के मौके पर भारत और ब्राजील ने डिजिटल इख्तिरा को फरोग देने और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों में तआवुन की खातिर मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कानूनी खिदमात के इम्तिहानात के लिए प्रैक्टिस की शर्त में कमी करके 3 साल से 1 साल कर दी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ इक्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने के लिए भारत के अज़्म को दोहराया है। उन्होंने सिंगापुर के तिजारत और सनत के वजीर के साथ मुलाकात की। अमरीका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि ये कदम अमरीका की दाखिली इकतसादी मुश्किलात से तवज्जो हटाने के लिए उठाया गया है। और FIH आलमी कप में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला नेदरलैंड्स की टीम से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. United States wants to impose toughest sanctions on Iran. Tehran says move seeks to divert attention from US domestic financial problems. And Indian duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to women's doubles semi-finals of BWF World Championships.

0: और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश

0: सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब

0: इराक, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
2: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्वकप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार। आज एक कलाकार प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसका अंदाज ही अलग है, नवाबी भी है। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की। एक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार आइकन जिन्होंने ओमकारा में लंगड़ा त्यागी बन के सबको हिला दिया, लवाज कल में दिल जीता और तांडव में पॉलिटिक्स का रंग दिखाया। तो अगले 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ सैफ अली खान के किस्से, उनकी फिल्मों और उनकी कलाकारी के नाम।

आज हम बात कर रहे हैं एक कलाकार में, कलाकार सैफ अली खान की। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ था। इनके पिता मंशूर अली खान पटौंदी एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और माँ शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। इनके पूर्वज पटौंदी रियासत के नवाब थे तथा इनके पूर्वज भोपाल के नवाब भी कहे जाते हैं। इनका बचपन से ही भोपाल से महत्वपूर्ण संबंध रहा है। इन्होंने अपना जो स्कूल लाइफ थी वो लॉरेंस स्कूल सनावर और लॉकस पार्क स्कूल हेटर्डफोर्ड सिरे इंग्लैंड में पूरा किया, जिसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सैफ अली खान विंचेस्टर कॉलेज इंडिपेंडेंस स्कूल फॉर बॉयज़ इन यूनाइटेड किंगडम चले गए। अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने 2 महीनों तक दिल्ली स्थित एक एडवर्टाइजिंग फर्म के लिए काम किया। उसके बाद उनके पारिवारिक मित्र के कहने पर उन्होंने कपड़ों के ब्रांड ग्वालियर स्वीटिंग्स के लिए कुछ विज्ञापनों में भी काम किया, पर किसी कारणवश ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और उन्हें मुंबई आना पड़ा। इनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और भी बातें जानेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

सैफ अली खान ने अपने अभिनय की शुरुआत परंपरा फिल्म जो कि 1993 में आई थी, इसके बाद मल्टी स्टारर ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कच्चे धागे और हम साथ साथ में सफलता मिली। 2000 के दशक में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी दिल चाहता है जो 2001 में आई थी, कल हो ना हो जो कि 2003 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की और कई पुरस्कार भी जीते, और रोमांच हम तुम, परिणीता सलाम नमस्ते और तारा रम पम पम में एक एकल पुरुष कलाकार के रूप में सफलता हासिल की। सैफ अली खान को एक हसीना थी में एक चालाक व्यवसायी, अंग्रेजी फिल्म बीइंग साइरस में एक प्रशिक्षक और ओमकारा में इयागो के किरदार के लिए काफ़ी सराहना मिली थी। उन्हें एक्शन थ्रिलर रेस और रेस टू जो कि 2013 में आई थी और रोमांटिक कॉमेडी लव आजकल और कॉकटेल में भी व्यावसायिक सफलता मिली। कई अन्य असफल फिल्मों के बीच खान को नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय मूल श्रृंखला सेकंड गेम्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सराहा गया और उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली एक्शन फिल्म तानाजी और देवरा जो कि पार्ट 1 थी।

सैफ अली खान को क्राइम ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर और कॉमेडी रोमांस तक विभिन्न फिल्म शैलियों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। फिल्मी करियर के अलावा खान एक नियमित टेलीविजन प्रस्तोता और मंच कलाकार भी हैं। विभिन्न ब्रांडों और उत्पादकों का विज्ञापन करते हैं और इल्यूमिनाती फिल्म्स और ब्लैक नाइट फिल्म्स नामक प्रोडक्शन कंपनियों के मालिक भी हैं। सैफ अली खान ने कई पुरस्कार भी जीते, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं, और उन्हें 2010 में पद्मश्री 4th सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ।

और इसी गीत के साथ ही सैफ अली खान पर आधारित एक कलाकार प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। सैफ ने हर रोल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उम्मीद है आपको उनके बारे में ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा मिलूंगी आपसे अगले एक कलाकार में किसी और नए सितारे के साथ। तब तक के लिए फिल्मी गीतों का मजा लीजिए और याद रखिए, असली कलाकार कभी पुराना नहीं होता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस, फिल्मी सॉन्ग ऑफ गोल्डन एरा।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तेरे घर के सामने फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा आपने सुना। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत से सजाया था SD बर्मन ने। अब आइए सुनवाते हैं आपको बेहद ही खूबसूरत सा गीत परख फिल्म से, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

मेरा साया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से, लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाज़ में।

आवाज में शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा था राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने।

गुलजार के लिखे इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत दिया था एस आर डी वर्मन ने और फिल्म का नाम था आंधी। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म कटी पतंग से।

कटी पतंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मैटिनी मेलोडियस अब यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन, अभी आप मीरा बासु की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। सामीन, इस्मत चुगताई 21 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुई। उनकी परवरिश भाइयों के साथ हुई, लिहाजा गिल्ली डंडा खेलना, घुड़सवारी करना और दरख्तों पर चढ़ना वगैरह उन्हें अच्छा लगता था। वो बचपन से ही बेबाक थीं। इब्तदाई तालीम के बाद अलीगढ़ से FA का इम्तिहान पास किया और लखनऊ के IIT कॉलेज में दाखिले लिया। बाद अज़ां अलीगढ़ से BT पास किया। इस्मत चुगताई ने 12 बरस की उम्र से कहानियां लिखना शुरू कर दी थीं। उनकी पहली कहानी फसाद के उनवान से सन 1939 में रिसाला साकी में शाया हुई थी। उनकी कहानियों के दो मजमूए कलियां और चोटें सन 1941 और 1942 में शाया हुए। उनकी तख्लीकात हकीकत निगारी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके यहाँ रिवायत से बगावत और इन्हराफ है। बकौल पीर अकरम, कब हमारे हाथ आईं खुशियों की तितलियाँ, उम्र गुजरी बस यूं ही रंगों के पैकर देखते, जिंदगी की गहमा गहमी ने ये फुर्सत ही न दी, हम हथेली पर लिखा अपना मुकद्दर देखते। आइए सामेन, हरी हरन की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है विजय सिन्हा का।

सामीन, अभी आप अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राहत इंदौरी का। सामीन, इस्मत चुगताई की शादी फिल्म प्रोड्यूसर शाहिद लतीफ़ से हुई थी। उन्होंने फिल्मों के लिए कहानियाँ और मकालमे भी लिखे। वो अपने मकालमों में तंज व ज़राफ़त से काम लेती हैं और किरदारों से अक्सर तीखी ज़बान इस्तेमाल कराती हैं। यही ज़बान उनके फ़न को चार चांद लगाती है। कई अफसानवी मजमूए मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। ज़िद्दी, मासूमा, टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, एक कतरा खून वगैरह नावल हैं। उन्हें अदबी खिदमात के सिले में कई एजाजात मिले। सन 1975 में पद्मश्री का एजाज़ मिला। सन 1990 में इकबाल सम्मान से नवाजा गया। गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। 24 अक्टूबर सन 1991 को वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। वजाहत अली संदेलवी का शेर है, अमन हो, इंसाफ हो और हो मोहब्बत की फ़िज़ा, एक दुनिया हम बनाएं एक नए उनवान से, आब गुल से दीदाए बेदार पैदा कर दिया, हम भी छूटे ज़िंदगी के एक बड़े एहसान से। आइए सामीन, जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है राजेश रेड्डी का।

सामिन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशार गज़ल।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उर्दू मजलिस कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: होगा हाय हाय।
1: 这里广播电台听众朋友们，请收听拉达长的歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं,
2: मैं हूं इनकी सहयोगी कविता शर्मा।
1: और कविता जी का भी स्वागत है और सभी श्रोताओं का भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम हॉकी वर्ल्ड कप की तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ बैडमिंटन की भी बात करेंगे। क्या उलटफेर हुआ है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, साथ ही साथ आज लुसाने डायमंड लीग शुरू होने वाला है। पहले दिन कौन कौन से खेल खेले जाएंगे और जैवलिन थ्रो पर खासा नजर रहेगी हम सभी की। साथ ही साथ अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की भी बात करेंगे। फुटबॉल में डूरन कप और सुब्रत कप में क्या है खास, और साथ ही साथ DPL भी रहेगा आज का मुख्य केंद्र।
2: जी हाँ बिल्कुल, तो जिस तरीके से दीपिका ने बताया, अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में, जहां पे खेली जा रही है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप।

0: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जहां आज का दिन राहत लेकर आया, वहीं गुरुवार का दिन भारतीय बैडमिंटन के लिए मिलाजुला रहा। भारतीय महिला बैडमिंटन डबल पेयर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में ऐतिहासिक उलटफेर करते हुए भारत के लिए कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। आज खेले गए मुकाबले में गैर वरीय भारतीय जोड़ी ने चीन की मजबूत जोड़ी जिया यीफान और झांग शू जियान को 1 घंटे 9 मिनट तक चले मुकाबले में 16-21, 21-15, 21-13 से मात दी।
1: A fantastic performance from the two Indians and hugely appreciated by a gloriously partisan crowd.
2: Teresa Jolly in tears. Yeah. She hugs Pulela Gopichand and father and daughter embrace.
1: Oh, they've guaranteed themselves a medal. They've knocked out one of the top pairs in the event.
0: महिला डबल्स में 15 साल बाद भारत के खाते में विश्व चैंपियनशिप मेडल आया है। इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने लंदन में हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने घरेलू दर्शकों के अपार समर्थन के बीच पहला गेम हारने के बाद बेहतर स्मैश और साफ सुथरे नेट प्ले के दम पर मैच का रुख पलट दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा इस जोड़ी ने।
3: आई थिंक फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, आई थिंक थोड़े बहुत चेंज किया, और स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था, पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया कुछ भी। आई थिंक वी वर जस्ट रोटेटिंग, वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव एंड यू नो जस्ट टू बी काम ऑन कोर्ट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज देर नंबर 5-4 इन द वर्ल्ड, सो देर नॉट गोना गिव इजी पॉइंट्स, सो वी जस्ट वांटेड टू बी पेशेंट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस।
0: चीन की जिया यीफान महिला डबल्स की दिग्गज खिलाड़ियों में एक हैं। उन्होंने 4

0: विश्व चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके साथ ही उनके नाम ओलंपिक में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है। हालांकि उन्होंने ये मेडल चेन किंग चेन के साथ जीते थे। पिछले साल के अंत में चेन ने संन्यास ले लिया था। इसके बाद से जिया की नई जोड़ीदार झांग यू शियान बनी। अब ये भारतीय जोड़ी अपने अगले मुकाबले में मेडल का रंग जरूर बदलना चाहेगी। चलिए अब बात करते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को हुए मैचेस की, जहां सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के जुनैदी आरिफ और राइकिंग याप से था। पहले गेम में भारतीय जोड़ी को 21-23 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मुकाबला भारतीय जोड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। सात्विक और चिराग ने दबाव में शानदार खेल दिखाया और दूसरे गेम में 21-19 से जीत हासिल करके मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में भी दोनों खिलाड़ियों ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और 21-17 से गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह भारतीय जोड़ी ने 21-23, 21-19, 21-17 के स्कोर से जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगला मुकाबला और भी कड़ा संघर्ष वाला है।
1: जब भी हम कोर्ट पे जाने वाले थे, पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा। इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट। वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज़ इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट, पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू लाइक वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, बट देयर हैव बीन सिचुएशंस इन द पास्ट वेयर वी हैव नॉट प्लेड एट आवर बेस्ट, बट वी हैव गॉट बैक एंड आई थिंक वी जस्ट try to tell each other that eventually things will turn into your favor. Just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: जहां एक तरफ थोड़ी खुशी की खबर आई, वहीं हमारी पीवी सिंधु की चुनौती समाप्त हो गई। महिला एकल में भारत की अनुभवी और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग जी यी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सिंधु ने मुकाबले की शुरुआत में संघर्ष किया और पहला गेम 11-21 से गवा दिया। हालांकि दूसरे गेम में उन्होंने शानदार वापसी की और 21-15 से गेम अपने नाम करके मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन वांग जी यी ने अंत में 21-17 से गेम जीत लिया। इस तरह सिंधु को हार का सामना करना पड़ा और महिला एकल में उनका अभियान समाप्त हो गया।
2: थोड़ा और पेशेंट रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम वन, गेम टू और गेम थ्री भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट थ्री पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेज गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: जहां महिला एकल में चुनौती समाप्त हुई, वहीं पुरुष एकल में भी आयुष शेट्टी का सफर थम गया। पुरुष एकल में भारतीय युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का अभियान प्री क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। आयुष का मुकाबला इंडोनेशिया के एलवी फरहान से था। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले में प्रयास किया, लेकिन इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने दोनों गेम में बढ़त बनाए रखी। अलवी फरहान ने मुकाबला 21-19, 21-11 से अपने नाम किया। इस हार के साथ आयुष शेट्टी पुरुष एकल प्रतियोगिता से बाहर हो गए, लेकिन आयुष के लिए विश्व चैंपियनशिप का सफर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर गया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक बड़ा उलटफेर करके विश्व नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यूची को हराकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।
3: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was a better man.
0: मिश्रित युगल में भी ध्रुव तनिषा बाहर हो चुके हैं। मिश्रित युगल में भारत की ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को चीन के गुओ शिनवो और चेंग पोंग हुई की जोड़ी के खिलाफ हार मिली। भारतीय जोड़ी पहला गेम 16-21 से हार गई। दूसरे गेम में चीनी जोड़ी ने अपना दबदबा और मजबूत किया और गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भी हार के साथ बाहर हो गए।
4: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी, हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे, हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
0: कुल मिलाकर भारत का अब तक का जो परिणाम है वो मिला जुला है। अब देखना होगा कि क्या भारत की झोली में एक और मेडल ऐड हो पाता है या फिर हमें सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ता है।

0: कुछ मुकाबलों में निराशा हमें हाथ लगी, लेकिन फिलहाल युगल जोड़ियां जो हैं वो अपने अपने मुकाबलों में डटी हुई हैं मेडल की राह के लिए। अब से कुछ ही देर बाद होगा मुकाबला सात्विक और चिराग शेट्टी का। उसके बाद अगर आपको ये बताएं कि बैडमिंटन में भी इस वक्त जो लटफेर है वो देखने को मिल रहे हैं, थाईलैंड के कुनलावुत नई दिल्ली में जो अभी चैंपियनशिप खेली जा रही है, इसमें पुरुष वर्ग में एकल वर्ग से बाहर हो गए हैं और इनको बाहर किया है फ्रांस के एलेक्स ने। तो ये है लेटेस्ट अपडेट अभी तक बीडब्ल्यूएफ की। लगातार आपको अपडेट हम इस पर देते रहेंगे। बने रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम खेल खिलाड़ी के साथ।
1: और अब बात कर लेते हैं लोसाने डायमंड लीग की। स्विट्जरलैंड के लोसाने में आज एथलेटिक्स के सितारों का जमावड़ा है। वेंडा डायमंड लीग 2026 के 12वें संस्करण एथलेटिसिमा लोसाने का मुख्य मुकाबला आज 21 अगस्त को स्टेड ओलंपिक डीला पोंतेज में हो रहा है। डायमंड लीग का यह चरण खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राजील्स में 4 और 5 सितंबर को होने वाले डायमंड लीग फाइनल से पहले क्वालिफिकेशन के लिए ये आखिरी दौर के महत्वपूर्ण मौकों में से एक है। और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा रमेश पथिराज की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 28 वर्षीय भारतीय एथलीट ने पिछले साल से कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं जीती है, जबकि श्रीलंकाई भाला फेंक की धाविका शानदार फॉर्म में है। पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद भारतीय भाला फेंक के धुरंधर नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टाडे ओलंपिक डीला पोंतेज में आयोजित होने वाले लोसाने डायमंड लीग 2026 में शीर्ष स्थान हासिल करने की कोशिश करेंगे। आगामी एथलेटिक्स मीट के लिए नीरज चोपड़ा को लोसाने में चौथी उपस्थिति होगी और 28 वर्षीय एथलीट 2022 में 89.08 मीटर के थ्रो के साथ और 2023 में 87.66 मीटर के प्रयास के साथ डायमंड लीग स्पर्धा जीती थी, जबकि 2024 में भाला फेंकते हुए 89.49 मीटर के साथ उपविजेता रहे थे। लुसाने डायमंड लीग नीरज चोपड़ा को 2026 एथलेटिक सत्र की तीसरी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता भी होगी। चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद उन्होंने जून में दोहा डायमंड लीग में वापसी की थी और उन्होंने वहां 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था और फिर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से रजत पदक अपने नाम किया था। और डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा भारत की ओर से प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनका मुकाबला रहेगा रुमेश पथिरागे जो श्रीलंका से हैं, एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा से हैं और आर्टुर फेल्फनर यूक्रेन के, कार्टिस थॉमसन अमेरिका, जैकब वॉल्डलिच चेकिया के और मार्क मिंचेलो यूएसए के और कॉर्शन वॉलर ट्रिनिडाड और टोबैको के हैं। साथ ही साथ साइमन वियरलैंड स्विट्जरलैंड के हैं। और अगर हम अन्य मुकाबलों की और नजर डालते हैं तो उनमें हैं महिला जेवलिन थ्रो के साथ साथ पुरुष ट्रिपल जंप, महिला 400 मीटर हर्डल्स, महिला पोल वॉल्ट, महिला 200 मीटर और उसके तुरंत बाद शुरू हो गए पुरुष जेवलिन थ्रो के मुकाबले। उसके बाद महिला 300 मीटर स्टीपल चेज, पुरुष 800 मीटर, पुरुष लॉन्ग जंप, महिला 100 मीटर हर्डल्स और ये सब मुकाबले जो है आज शाम खेले जाने हैं। तो देखने देर रात तक मुकाबले चलने वाले हैं। ये देखने वाली बात यह है कि किस तरह के प्रदर्शन रहता है और क्या क्या खास मुकाबले ऐसे होते हैं जो हमें रोमांचित करते हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं हॉकी की तरफ।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार जुझारूपन दिखाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ गोल रही ड्रॉ खेला और अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में गोल नहीं हुआ, लेकिन मुकाबला पूरी तरह सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के गोल से कम नहीं था। एम्सलवीन में खेले गए पूल डी के इस आखिरी मैच में भारत ने इंग्लैंड के लगातार दबाव के बावजूद आखिरी सीटी तक अपना डिफेंस मजबूत रखा। 0-0 के इस नतीजे के साथ भारत 5 अंकों के साथ पूल डी में दूसरे स्थान पर रहा और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम हैं। मैच से पहले भारत के लिए समीकरण बिल्कुल साफ था। 4 अंकों के साथ मौजूद भारतीय टीम को शीर्ष 2 में बने रहने के लिए कम से कम ड्रॉ की जरूरत थी। वहीं 3 अंकों पर मौजूद इंग्लैंड को अगले दौर में पहुंचने

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे कलाकार ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये किसान गीत। बहुत ही अच्छा था और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आपको संदेश मिला होगा गाने के माध्यम से।
1: बिल्कुल। और देखिए, बरसात के मौसम में जहाँ एक तरफ हमें गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन कुछ बीमारियाँ भी बरसात के मौसम में बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। उसमें से सबसे अगर आम बात करें तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। तो इसलिए साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि उन्हें पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े, जिससे शरीर कवर रहे। इसके साथ साथ घर की खिड़कियां भी आप उन पे जाली लगवा लें और आसपास पानी इकट्ठा होने ना दें।
0: को सही बात है क्योंकि डेंगू एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही मुश्किल समय लेके आ जाती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेंगू की पहचान कैसे हो, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अक्सर ये समझ पाते हैं कि उन्हें डेंगू हुआ है या वायरल फीवर। क्योंकि हालांकि दोनों में बुखार और कमजोरी, सिरदर्द जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी असमानता होती है। जैसे कि वायरल में आमतौर पर फीवर हल्के से मध्यम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और 2 से 3 दिनों में अपने आप कम हो जाता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि डेंगू में तेज़ बुखार बना रहता है और साथ ही शरीर में तेज़ दर्द और लाल दाने निकल आते हैं, जिससे प्लेटलेट्स का गिरना एकदम धीरे धीरे कम होता है। तो जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ लक्षण है और तेज बुखार 2 से 3 दिन में कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपने संपर्क करना है, पास के रोकथाम अस्पताल में जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि ये समस्या बहुत ही मुश्किल घड़ी ला देती है।
1: बिल्कुल, इन बातों का आप रखिए ध्यान। और अब सुनते हैं दिनेश गिरी की आवाज़ में ये

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे रामायण में अश्वमेध का किस्सा, और ये रागनी थी। और अब जिनसे आप सुन रहे थे कलाकार थे दिनेश गिरी। और इसके साथ ही आज का राम संसार कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी साथियों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला

0: डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए भाई, कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए कृषि संबंधित जानकारियां भी लेकर आते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी पैदावार अच्छी हो। और पैदावार अच्छी करने के लिए जहां एक तरफ मिट्टी की जांच जरूरी है, उन्नत बीजों का चयन भी होना चाहिए, समय पर सिंचाई भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ संतुलित खाद और पोषक तत्व प्रबंधन भी बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं अक्सर कि खरपतवार के कारण कई बार हमारे किसान भाइयों की जो मूल फसल होती है उसकी पैदावार कम हो जाती है और काफ़ी उसमें नुकसान भी हो जाता है, तो उसका प्रबंधन भी बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए खास बातचीत लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, हम एक खास बातचीत लाए हैं और विषय भी उसी से जुड़ा हुआ है कि फसलों में पोषक तत्व और खरपतवार प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं अनिल यादव से, उनसे बातचीत करें कुलदीप सिंह।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय का महत्व बारिश के समय में बहुत अधिक होता है। खरीफ की फसलों का समय है और खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसकी बहुत से किसान भाई समय पर पहचान नहीं कर पाते हैं। और खेती में पोषक तत्व प्रबंधन है किसी दुकानदार के कहने से गैर सिफारिश शुदा जो पोषक तत्व हैं बिना उचित समय के फसलों में डाले जाते हैं, तो इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल, यह शोधार्थी हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अनिल जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: देखिए, खरीफ फसलों की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो खरीफ फसलों में हिस्सा है धान का है, इसके बाद तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं। और खेती जो आज के समय में है वो लागत अधिक है और मुनाफा कम है, तो इसमें किसान भाई कहते हैं कि खेती आज के दिन घाटे का सौदा साबित हो रही है। ये पोषक तत्व आखिर है क्या?
3: देखो, कुछ वैज्ञानिक उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है।
2: जी,
3: अब ये 17 पोषक तत्व होते कौन से हैं? तो इनके अंदर 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पौधों को जरूरत तो होती है लेकिन हमें उनको सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पौधा उन 3 पोषक तत्वों को खुद से ही ग्रहण कर लेते हवा से और मिट्टी से, जो जल के द्वारा लेता है। उनके अंदर 3 पोषक तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
2: जी,
3: इनके अलावा अब आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, इनमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधे को सर्वाधिक आवश्यकता होती है।
2: अनिल जी, इसमें कि बहुत सारे किसान वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये जो शब्द है इससे वाकिफ नहीं होते, वो सीधा जिक्र करते हैं यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके, इन पे बात करते हैं, तो इन चीजों का कैसे किसान भाइयों को पता चले?
3: देखिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया यूरिया और डीएपी का, पोषक तत्व जो होते हैं हम उनको सीधा ही फसलों को उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है उर्वरकों की। उर्वरकों के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न मात्रा होती है पोषक तत्वों की। जैसा कि बात करें, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है
2: जी,
3: और डीएपी में 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है
2: जी।
3: तो इनके द्वारा हम फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध करवा सकते हैं। और जैसे किसान भाइयों को सिर्फ 2 ही नाम पता होते हैं, यूरिया और डीएपी
2: जी,
3: पर असली में बात यह है कि ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनसे सिर्फ 2 ही पोषक तत्वों की सप्लाई हो पाती है,
2: होती है जी।
3: जबकि आवश्यक होते हैं 17। तो अगर बाकी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पौधों की अंदर रासायनिक क्रियाएं प्रभावित होंगी।
2: अनिल जी, यह पता कैसे लगे कि किस समय हमारी फसल को कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है?
3: इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि मृदा को कितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसमें कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा पोषक तत्व कितना डालना है।
2: मतलब उसके लिए हमें मिट्टी की जांच करवानी आवश्यक होगी।
3: इसके लिए भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना 2015 से चलती आ रही है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।

0: जी
1: इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर जो मृदा की प्रयोगशाला होती है
0: जी
1: वहां अपने अपने मिट्टी का सैंपल लेके जा सकते हैं, वहां जमा कराएंगे तो वहां के जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं वो उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद में वो बताएंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व किस किस मात्रा में आपकी मिट्टी में उपलब्ध है और कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में आपको देने की आवश्यकता है।
0: जी
1: इससे हम निर्धारित कर सकते हैं और जो ज्यादा पोषक तत्व डालने या कम पोषक तत्व डालने से जो उत्पादकता प्रभावित होने वाली होती है उसका निवारण भी कर सकते हैं।
0: इसमें समय का प्रबंधन, समय के हिसाब से कि किस समय
1: जी
0: हमें कितनी मात्रा देनी है, उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा
1: देखिए,
0: बताएं।
1: इसके लिए एक दो पीछे की बातें होती हैं कि कुछ अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं मिट्टी के
0: जी
1: अंदर।
0: जी
1: जैसे कि बात करें, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं वो बहुत चलायमान होते हैं मृदा के अंदर,
0: जी
1: जैसे कि नाइट्रोजन को आज अगर मिट्टी के अंदर डालते हैं तो 3 या 4 दिन के बाद या तो पौधा ले लेगा उसको और जो बच जाता है वो कहीं ना
0: हवा
1: विलुप्त हो
0: में उड़
1: जाएगा,
0: जाएगा। जी
1: या तो हवा में चला जाएगा या बहके चला जाएगा
0: जी
1: या फिर पानी के साथ रिसकर नीचे चला जाएगा।
0: जी
1: जबकि कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं जिनको आप जहां डालते हो वो कई टाइम तक वहीं पड़े रहते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस और पोटेशियम।
0: जी इसमें अनिल जी, जब हम पोषक तत्व तो दे रहे होते हैं
1: जी
0: उर्वरक के माध्यम से, तो हमें सिंचाई से पहले देना है या सिंचाई के बाद देना है?
1: देखिए, सबसे बढ़िया उसके लिए वातावरण होता है कि नमी होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तो हम जैसे ही सिंचाई करते हैं या हल्की बारिश होती है
0: जी
1: उसके बाद में पोषक तत्व डालना सबसे उपयोगी साबित होता है।
0: तो इसमें जैसे धान की फसल है, हमारे देश में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है,
1: जी
0: ये सबसे अधिक लागत वाली भी फसल है,
1: जी
0: और इसमें किसान भाई पोषक तत्वों के जो जानकारी है उसके अभाव के कारण उसमें ऐसे ऐसे उर्वरक और ऐसे ऐसे बायोस्टूलमेंट डालते हैं
1: जी
0: जिनका शायद उस समय महत्व नहीं होता। तो किसानों में ये जागरूकता कैसे लाई जाए कि वो सही समय पर सही पोषक तत्वों का अपनी फसल में इस्तेमाल करें?
1: एक तो मैंने आपको अभी बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करिए कितना हमें डालने की
0: इसके
1: आवश्यकता
0: लिए
1: है।
0: प्रेरित कैसे करें किसान को कि आपको मिट्टी जांच करवानी?
1: देखिए, ये निःशुल्क होता है वैसे तो, या फिर
0: जी
1: बहुत ही मिनिमम शुल्क की आवश्यकता होती है
0: जी
1: अपना मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करवाने के लिए।
0: जी
1: तो अगर किसान भाई इस तरीके से सोचें कि 1 किलो यूरिया या फिर 1 बैग की बात करते हैं अपन,
0: जी
1: जो पर एकड़ के हिसाब से आंख बंद करके डाल देते हैं किसान भाई,
0: जी
1: उस 1 बैग यूरिया में से 1/3% जो होता है वही पौधा ले पाता है। आप सोचिए, 2/3 कहाँ गया, विलुप्त हो गया, तो कितना नुकसान हो रहा है, पौधा को मिल भी नहीं पा रहा है।
0: इससे अनावश्यक तौर पर जो फसल में हमारी लागत है वो बढ़ रही
1: जी
0: है। तो किसान भाइयों को यह यह समझने की आवश्यकता है कि अपनी फसल का हम जिस वक्त उसमें जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता है वही पोषक तत्व उसमें दें, और
1: जी
0: उससे पहले मिट्टी और मिट्टी के साथ साथ पानी जांच की भी एक बात आती है।
1: जरूर
0: मिट्टी और पानी दोनों जांच कराएंगे तो हमें यह पता लगेगा कि कितनी मात्रा में कौन सा पोषक तत्व हमें अपनी फसल में डालना है।
1: जी
0: धान की फसल के अलावा जो तिलहन और दलहन फसलें हैं
1: जी
0: उनमें कैसे पोषक तत्व जो प्रबंधन है वो कैसे रहता है?
1: देखिए, जो तिलहन फसलें होती हैं उनमें
0: जी
1: हमारा जो मुद्दा होता है वो होता है तेल। तेल में कहीं ना कहीं मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता को सराहा जाता है, तो गुणवत्ता के लिए जो सबसे उपयुक्त पोषक तत्व होता है वो होता है सल्फर। तो बाकी फसलों में भले ही सल्फर ना डाला जाए, सल्फर जिसको गंधक भी कहा
0: काम क्या
1: जाता है,
0: करता है सल्फर?
1: सल्फर जो होता है तेल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उसके अंदर
0: जी
1: जो बॉन्ड होते हैं उनको अच्छा करता है, जिसकी वजह से
0: पौधे का जो व्यवहार है डालने के
1: जी
0: बाद वो कैसे परिवर्तित होगा?
1: देखिए, जो सल्फर होता है उसकी कमी से क्या होता है कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।
0: जी
1: लेकिन हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान में देने की जरूरत है, वो ये है कि पौधे के किस भाग के अंदर पीलापन नजर आ रहा है। अगर
0: जी
1: पौधे के निचले भाग या निचली पत्तियों के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो नाइट्रोजन उसकी कमी
0: नाइट्रोजन की
1: को
0: कमी है।
1: दिखाता है,
0: जी
1: उसके लिए हमें यूरिया डालना है।
0: जी
1: अगर पौधे की ऊपरी पत्तियों के अंदर पीलापन आ रहा है और अगर पूरी पत्ती पीली है लेकिन बीच की जो नसें होती है, वेन्स होती हैं, अगर वो हरी हैं तो वहां पे वो मैग्नीज की कमी को दिखाता है। ऐसे और भी लक्षण होते हैं जो किसान भाई बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस की अगर कमी होती है, पौधे की जो निचली पत्तियां होती है वो बैंगनी कलर की हो जाती है, और अगर पोटेशियम की कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो झुलस जाते हैं, वो भूरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। और अगर जिंक, जो आजकल लगभग 50% तक कमी है जिसकी,
0: कमी
1: जिंक की कमी से क्या होता है कि जो पौधा होता है वो प्राप्त नहीं कर पाता है, झाड़ी नुमा दिखाई देता है, बोना रह जाता है, उसकी
0: हरापन
1: पत्तियां
0: भी
1: मुड़ने
0: कम
1: लग
0: आता है
1: जाती है,
0: उसमें।
1: हरापन भी कम हो जाता
0: जी
1: है। किसान भाई को तो लगता है कि हो रहा है, लेकिन इससे पौधे की जो रासायनिक और जो बाकी क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। जैसे कि पौधा प्रकाश को यूज करके क्या करता है, खाना बनाता है, तो अगर पत्तियां मुड़ जाएंगी या फिर पीली पड़ जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम कर पाएगा, जिसकी वजह से पौधा खाने का उत्पादन कम करेगा और
0: और उसका
1: उत्पादकता भी कम
0: विकास कम
1: होगी।
0: होगा जिससे उत्पादन
1: जी
0: भी प्रभावित होगा। तो किसान भाइयों यहाँ यह समझने की आवश्यकता है होता है कि हमारी फसल के अंदर जब भी हम पोषक तत्व डाल रहे हैं तो दुकानदार के कहने पर या देखा देखी उसमें ना डालें, बल्कि जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है और जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही हम डालेंगे, तो हमारा खर्च भी नियंत्रित होगा, हमारी लागत घटेगी और निश्चित तौर पर हमारी फसल भी बेहतर उत्पादन देगी। अनिल जी, इसमें

0: किसान भाइयों को ये बात और बताएं कि जब हम फसल में ये उर्वरक दे रहे हैं
1: जी
0: तो उसमें मात्रा क्या रहती है?
1: अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, कि ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है।
0: जी
1: परंतु इनके साथ साथ अगर तिलहन की बात करें तो सल्फर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें आवश्यकता होती है। जबकि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, उसकी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन, 40 से 60 kg के हिसाब से फॉस्फोरस
0: जी
1: और 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से पोटेशियम की ज़रूरत होती है।
0: ये तीनों पोषक तत्व तो हमें देने।
1: जी
0: इसके अलावा आपने 17 पोषक तत्वों की बात की,
1: जी
0: बाकी कौन से हैं?
1: जैसे कि हम प्राथमिक के अंदर आते हैं NPK, उसके बाद में द्वितीयक के अंदर आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके बाद में 8 पोषक तत्व होते हैं, उनको कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है सूक्ष्म, मतलब इनकी मात्रा बहुत कम जरूरत होती है इनकी, लेकिन अगर ये मिट्टी के अंदर ना हुए या इनको ना सप्लाई किया गया, पौधे के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। किसान भाई लगभग आयरन और जिंक के बारे में सुने होते हैं,
0: जी
1: आयरन जिसको हम लोहा भी कहते हैं,
0: जी
1: लेकिन इन दोनों के अलावा 6 और होते हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन, निकल, कॉपर, मैग्नीज, ये भी होते हैं।
0: जी अनिल जी, एक चीज देखने को मिल रही है कि जो मौसम में परिवर्तन है वो पिछले कुछ सालों से ज्यादा देखने को मिल रहा है। बारिश का जो शुरुआती समय होता है उस समय बारिश नहीं होती,
1: जी
0: और जो ये मध्य समय आता है इसमें बारिश अधिक होती है, जिसमें अगेती धान की फसलें, तिलहन फसलें, बाजरा जैसी फसलें, ज्वार जैसी फसलें हैं वो लगभग अपनी प्रारंभिक अवस्था जो उनकी है वो पार कर चुकी होती
1: जी
0: हैं। तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना?
1: देखिए, आपको लग रहा होगा कि अगर खेत के अंदर पानी भरा है तो पौधे को पानी की जरूरत तो क्या ही होगी,
0: जी
1: लेकिन जल भराव की स्थिति में अगर पौधा मरता है तो वो जल की कमी से ही मरता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जो होती है, जो अपन सांस में लेते हैं, वो पौधों को भी चाहिए
0: वो
1: होती
0: उसकी
1: है,
0: जड़ तक नहीं
1: वो
0: पहुंच
1: जड़ तक नहीं
0: पाती।
1: पहुंच पाती, पौधा
0: जी
1: उसको ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए वो, और जो उसके जड़ होती है उसके अंदर जो छिद्र होते हैं जिनसे पानी अंदर जाता है, वो
0: जी
1: सब ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से वो जल की कमी से ही मरता है। रही बात पोषक तत्वों की, लगभग जो पोषक तत्व होते हैं, अगर जल भराव ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में एक चीज होती है pH जिसको कहते हैं, तो pH 6 से 7 के बीच में आके सेटल हो जाता है। लगभग जितने भी पोषक तत्व हैं वो इस pH के आसपास मिल जाते हैं। तो अगर हमें जल भराव की स्थिति में पौधे को बचाना है तो हमें बस नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है, बाकी अपने आप ही उसको मिल रहे होते हैं उस टाइम पे।
0: इसमें अनिल जी, चलते चलते एक सवाल आपसे और करूंगा कि उर्वरक की हमने बात कर ली, क्या प्राकृतिक ऐसी खाद नहीं है उर्वरक के बिना जो ये सारे पोषक तत्व तो हम जमीन में दें और कम से कम उर्वरक हमें डालना पड़े?
1: जैसे कि हमारे देश के अंदर भी चल रहा है जो प्राकृतिक खेती है उसको
0: हाँ
1: बहुत तवज्जो मिल रही है,
0: जी
1: ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी मिल रही है,
0: जी
1: इसके साथ ही जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसमें बहुत बड़ा अहम रोल है, जैविक पदार्थों के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करना,
0: जी
1: इस चीज को कहते हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन।
0: जी
1: समन्वित का मतलब ये होता है कि अगर दो या दो से अधिक आपके पास विकल्प हैं तो आप उनको किस तरीके से, किस मात्रा में उचित तरीके से उपयोग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और कम से कम लागत हो।
0: जैसे कुछ किसान भाई हैं खरीफ की फसल लेने से पहले वो ढेंचा की फसल
1: जी
0: उगाते हैं, मूंग की फसल उगाते हैं, और उसको खाद के तौर पर वो उसमें जुताई करके मिला देते हैं।
1: जैसे अगर किसान भाई अगर इसको काम में लेना चाहता है तो उनके लिए ये है कि आप मुख्य फसल जब भी बुआई करें उसके 1 महीने पहले इन हरी खाद को खेत में लगा दें, उसके बाद में बुआई के थोड़ा टाइम पहले कल्टीवेटर से इनको मिट्टी में मिला दें।
0: निश्चित तौर पर अगर हम खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे से करेंगे और सिफारिश शुदा जो खाद और उर्वरक है उनका प्रयोग करेंगे, हरी खाद खेत में देंगे,
1: जी
0: प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करेंगे, तो खेती में निश्चित तौर पर लागत कम होगी। लागत कम होगी तो मुनाफा अधिक होगा, और किसान भाई जो कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है वो घाटे का सौदा नहीं रहेगी, क्योंकि
1: जी
0: खेती के ऊपर हमारे देश में बहुत सारे उद्योग हैं जो खेती के कारण ही चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी।
2: अभी आप सुन रहे थे खास बातचीत, फसलों में पोषक तत्व व खरपतवार प्रबंधन। जानकारी दे रहे थे अनिल यादव और इनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप सिंह, और उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि सबसे पहले आप अपने पानी और मिट्टी की जांच करवाएं, उसके बाद ही आप ये निर्धारित करें कि कौन से पोषक तत्वों की कमी आपकी मिट्टी के अंदर है, जिससे कि आपकी लागत भी कम होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं अतुल कुमार की आवाज़ में ये रागिनी।
3: आ

0: भाई अभी आप सुन रहे थे रागिनी, कलाकार थे अतुल कुमार।
1: देखिए भाई, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जो ब्रांडेड दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी नागरिकों को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें, जो कि सामान्यतः 50 से 90% तक सस्ती उपलब्ध हो जाती हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो उनके हेल्थ को देखते हुए सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, उसे भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें बहुत ही कम दरों पर उन्हें जन औषधि केंद्र पर नैपकिन भी उपलब्ध हो जाते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएँ। और इसके साथ साथ आपके एरिया में कहाँ पर नज़दीकी केंद्र हैं उसको भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इनके पोर्टल पर जाकर।
0: और इसी के साथ काफ़ी सारी सुविधाएं भी हैं इसमें कि सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकती हैं जो कि कम कीमत में मिलती हैं ब्रांडेड दवाइयों से। और ये भी है कि उसमें प्रभावशाली उनके बराबर की ही होती है, पर थोड़ा बहुत उसका जो जो असर होता है वो कम नहीं होता। दवाइयों का असर वही होता है, वैसे ही होती हैं, उतनी ही क्वालिटी होती है उसकी, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो कम होती है। और अपने आप आसपास के स्टोर से आप जाके उसको ले सकते हैं।
1: और इसमें अगर हम बात करें तो मोबाइल ऐप के ज़रिए भी आप जन औषधि सुगम ऐप के ज़रिए लोकेशन चेक कर सकते हैं, दवाओं की लिस्ट चेक कर सकते हैं और उनके दाम भी घर बैठे आप आसानी से चेक कर सकते हैं और इससे योजना का लाभ उठा सकते हैं। और भाई, मौसम बदल रहा है तो अपने खाने पीने का भी आप विशेष ध्यान रखिए। बरसात के मौसम में तला भुना या ज़्यादा मिर्च मसाले खाना ना खाएं, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र होता है इस समय कमज़ोर हो जाता है। तो घर का बना हुआ सादा भोजन आप करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। और अब सुनवाते हैं आपको अमित तेवतिया की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे अमित तेवतिया की आवाज़ में ये उपदेश। और भाई कल है शनिवार, और आपको याद दिला दें कि शनिवार को हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 6:30 पर। ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होता है जिसमें कि हमारे श्रोता फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने पसंद के गीत और कलाकारों से हमें वाकिफ़ कराते हैं, और हम उनके पसंद के हिसाब से कार्यक्रम में गीतों को शामिल भी करते हैं।
1: भाई हमारा कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, साथ में कई मनोरंजन लाते हैं, जानकारी लाते हैं। आपको कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपकी जो प्रोत्साहन है वो हमारे कार्यक्रम को बहुत और अच्छा बेहतर बनाते हैं कि हम कोशिश करते रहते हैं। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसकी सुझाव और प्रतिक्रियाएं ज़रूर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृहकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं feedback@fnh@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं।
0: और भाई अगर हम बात करें अपने श्रोताओं से जुड़ने की, तो उसमें हम SMS के माध्यम से भी अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, फ़ोन के माध्यम से भी जुड़ते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो श्रोता हैं हमें पत्र भी लिखते हैं जिसमें वो हमें फरमाइश गीतों की भी देते हैं। इसके साथ साथ कृषि संबंधी अगर वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उन पत्रों

0: को भी हम शामिल करते हैं। रविवार के दिन पत्रों के द्वारा आपके सभी तरीके के कृषि संबंधी जो भी जानकारी होती है, जो भी आपके सवाल होते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। सभी कार्यक्रमों में हमें अपने श्रोताओं से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है और अधिक से अधिक श्रोताओं की भागीदारी कार्यक्रम को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

0: दिल्ली सरकार ने कहा दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल सेमीफाइनल में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास पुरानी और अनाधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास बेहतर कनेक्टिविटी और हरित क्षेत्र बढ़ाकर दिल्ली को आधुनिक तथा टिकाऊ राजधानी बनाना है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में जमीन सीमित है लेकिन हमारी सोच और परिकल्पना सीमित नहीं है। इस मास्टर प्लान के प्रमुख प्रावधानों में 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियां, 500 मीटर के दायरे में पारगमन अनुकूल विकास और पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास की व्यवस्था शामिल है। साथ ही इसमें लैंड पूलिंग के जरिए नए नियोजित आवासीय क्षेत्रों को विकसित करने पर भी बल दिया गया। श्री सूद ने कहा कि इस नीति में जहां झुग्गी वहीं मकान के अंतर्गत पुनर्वास, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक, हरित क्षेत्रों के विस्तार और जीरो वेस्ट विकास जैसे प्रावधान भी हैं।
1: प्लान्ड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर के एरिया को रीडेवलप करने की रास्ता मास्टर प्लान ने खोल दिया है। इन प्लान्ड एरियाज में उदाहरण के लिए डीडीए के फ्लैट बने हैं, 3000 स्क्वायर मीटर के लोग इकट्ठा आए तो उसको तोड़कर नए सिरे से 1.5 गुना एफएआर के साथ उसकी एफएआर का 5% कमर्शियल पेस के अनुसार बनाने की प्रावधान इसमें किया गया है। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज उनको भी रीडेवलप करने के लिए प्रावधान भी इसमें किए गए हैं।
0: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 106 इकाइयां पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करती पाई गयी, वहीं 78 इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध संचालन की सहमति के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही 44 मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया जबकि 33 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि प्रदूषण के स्रोत पर भी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
2: हमने 500 स्क्वायर मीटर से बड़ी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइटें हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है डस्ट पोर्टल और लगा दिए हैं वहाँ पर AI एनेबल्ड कैमरास जो कि वहाँ पर उड़ती हुई धूल मिट्टी को सेंसर कर पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में तुरंत आ जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा तेजी से फैलने के कारण स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या अब तक 1777 तक पहुंच गई है। मौसमी और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इन्फ्लुएंजा पर बारीकी से निगरानी करने को भी कहा गया। वहीं श्री सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, दवाओं और जरूरी मेडिकल उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था है। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अभियान के पहले चरण में लगभग 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और आसपास के क्षेत्रों में एंटी लार्वल दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। ट्रेन के साथ पावर स्प्रे टैंकर तैनात रहेंगे जिससे जल भराव और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों तक दवा पहुंचाई जा सके। निगम के अनुसार अभियान अगले महीने तक चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के विभिन्न रेलवे रूटों पर चलेगा। श्री वाही ने कहा कि बारिश के दौरान जल भराव से मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ती है, इसलिए शुरुआती स्तर पर ही उनके प्रजनन चक्र को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महापौर ने दिल्ली

0: वासियों से भी घर और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर तथा पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील की। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह के 4 आरोपियों को पंजाब और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे टेलीग्राम के जरिए बैंक खाते हासिल करके उन्हें कम्बोडिया और संयुक्त अरब अमीरात में बैठे साइबर ठगी करने वालों को उपलब्ध कराते थे। इनमें से एक बैंक खाता कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा था। इन मामलों में करोड़ों रुपए के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। दिल्ली के करोल बाग के प्यारेलाल रोड पर आज 2 मंजिला एक पुरानी इमारत के ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि हादसे में 2 घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभाग के अनुसार इमारत जर्जर हालत में थी और उसमें मरम्मत का कार्य चल रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को बिना मास्टर डिग्री के पीएचडी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले पात्र विद्यार्थी सीधे पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकेंगे। 2026-27 सत्र के पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था विशेष रूप से लागू की जा रही है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 4,400 एमटीएस कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर आज उन्होंने निगम मुख्यालय पहुंचकर दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही का आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ मिलने पर श्री वाई ने कहा कि सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें पूरा भी करती है और समान वेतन का निर्णय इसी संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उन्हें उनके कार्य दायित्व और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित तथा समान वेतन उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनसे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभा कंपनियों और निवेश के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांड्स को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये विरोध न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही न्याय के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया में सुर्खियां बटोरने की लालसा का प्रतीक है।
2: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य और

0: सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि वो स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है। पिछले कुछ सप्ताह में चीनी की कीमत बढ़ी है। पिछले महीने की 20 तारीख को चीनी की कीमत 48 रुपए प्रति किलो थी, जो कल बढ़कर करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की वृद्धि को एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने फैसले में संशोधन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि शाहदरा फ्लाईओवर से अप्सरा बॉर्डर की ओर जाने वाले मार्ग पर मरम्मत और नवीकरणीय कार्य के कारण 31 अगस्त तक यातायात धीमा या बाधित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने बताया कि मार्ग पर यातायात को नियंत्रित और सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली नगर निगम के राजभाषा विभाग की हिंदी प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। इस दौरान प्रतियोगिताओं में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निबंध लिखन, टिप्पणी और आलेखन, सुलेख तथा हिंदी ज्ञान जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य निगम के कामकाज में हिंदी को सरल, सहज और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रविवार को नई दिल्ली में 32वां स्थापना दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आयोग सभी हितधारकों के लिए NCS के मिस्ड कॉल सुविधा नंबर जारी करेगा। इससे आयोग कॉल करने वालों से संपर्क कर सकेगा और उनकी शिकायतें, मुद्दों और आवेदनों को समयबद्ध तरीके से दर्ज कर सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। NTA ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। NTA के उत्तर की चुनौती एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें JEE मेंस, नीट या UGC नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ने बेहद संघर्षपूर्ण क्वार्टर फाइनल में चीन की ही फैन और झांग शू को हराया। इस जीत के साथ ही भारत का पदक सुनिश्चित हो गया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में पहला भारतीय पदक होगा। वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग और वांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहेंगे और कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का लक्ष्य किफायती आवास, पुरानी और अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के साथ दिल्ली को आधुनिक और टिकाऊ राजधानी बनाना है। सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में स्वाइन फ्लू मामले तेजी से बढ़े, अब तक 1700 से अधिक मरीज मिले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026 अभियान शुरू किया। और नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विमेंस एम्पावरमेंट पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत हम लाए हैं कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: जी हाँ, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और रात्रि 11 से 10, 11 10 से आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.32 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: चिंता दोहराई। सरकार ने कहा देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता

0: और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की टीएमसी की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
2: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
3: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है, उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
4: 2 ships which are foreign flag. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
5: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों।

0: डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic

0: बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: इस मौके पर एसएसबी के बहुत से कैंपों के लिए संघीय बुनियाद भी रखा गया, जिनके लिए तकरीबन 179 करोड़ रुपए मालियत के कामों का अहाता किया गया है। वजीर दाखला ने बताया कि जब से मरकज में बीजेपी हुकूमत इख्तदार में आई है, सरहदी तहफ्फुज के लिए जिम्मेदारी अमले की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने वादे किया कि एसएसबी नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों के साथ खुली हुई सरहदों की हिफाजत करने का चैलेंज से पुरकाम अंजाम दे रही है। उन्होंने इसे दुश्वार तरीन फराइज में से एक करार दिया। मजीद बरआ उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने खित्ते में निगरानी में इजाफा किया है। जनाब शाह ने यादा किया कि ममता बनर्जी ने वहां सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए मतलूबा आराजी फराहम नहीं की थी, शुभिंदो अधिकारी ने इसे फराहम किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा जखीरा मौजूद है। शकर की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदामात किए हैं ताकि शकर की खातिरखा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत का कहना है कि वह सूरत हाल पर कली नजर रख रही है। शकर की कीमत में हालिया कुछ हफ्तों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को शकर की कीमत 48 रुपए फी किलोग्राम थी, जो कल बढ़कर तकरीबन 55 रुपए फी किलोग्राम हो गई। वजारत ने कहा कि शकर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए शकर की मुंतकली को करार देना मुनासिब नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: हुकूमत शकर की फराहमी बढ़ाने के लिए जखीरा अंदोजी के अमल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वजारत ने मुशाहदा किया है कि कुछ शुगर मिलों और ताजरों की सट्टेबाजी और जखीरा अंदोजी के अमल ने हालिया दिनों कीमतों के इजाफे में अहम रोल अदा किया है। हुकूमत ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक मुल्क भर के शुगर डीलरों के लिए 400 टन शकर की जखीरा अंदोजी की हद मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा थोक सारिफीन को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा शकर स्टॉक करने की इजाजत नहीं होगी। रियासतों और शुगर मिलों को 15 अक्टूबर से क्रशिंग का अमल शुरू करने का मशवरा दिया गया है। इस कदम से अक्टूबर में शकर की पैदावार मामूल के 3 से 4 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में शकर की दस्तियाबी में मजीद बेहतरी आएगी। दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS का आगाज किया। मरकजी काबीना ने इस स्कीम को पिछले महीने मंजूरी दी थी, जिसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की बजट जाती रकम मुख्तस की गई है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि यह स्कीम 1 अप्रैल 2026 से नाफिज हो गई है। इस स्कीम की मुद्दत 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए होगी। इस स्कीम का मकसद दायरा कार में मजीद इजाफा करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और बेहतर करके नीज अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाकर आलमी मुकाबला आरआई में इजाफा करना है। यह स्कीम भारतीय मोबाइल ब्रांड्स तैयार करेगी और रोजगार भी वजा करेगी। MPMS के 2 हदफी जुमरे हैं, जिनमें मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलतें फराहम करना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड्स की मदद करना शामिल है। ये आकाशवाणी है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने आज मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। बिलखसूस कौमी राजधानी पर तवज्जो मरकूज की गई। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया कि जनाब नड्डा ने कौमी सतह पर निगरानी और वबा की तहकीक से मुतालिक सूरत हाल IL और SARI रुझानात, जांच लेबोरेटरी की निगरानी और हिफ्जान सेहत की सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया, ताकि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलात का बंदोबस्त किया जा सके। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने लगातार निगरानी, वसी तौर पर नजर रखने और सरगर्म तौर पर तैयार रहने

Esko. Illa tazkiratan liman yakhsha.

तुझको जेबा गुरूर है तेरे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक

शीर्षक 27 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से एक है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय महिला पहलवान काजल डोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण के पूल ई मुकाबले में भारत को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा है। अम्स्टलफेन में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं और आइए सुनते हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम। गीत सुनहरे कार्यक्रम ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेते हैं लेकर आते हैं गोल्डन एरा के खूबसूरत गीत। आज गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आरज़ू के गीत के साथ। आवाजें हैं आशा भोसले और मुबारक बेगम की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दो बदन से। आवाजें हैं आशा भोसले की, संगीत है रवि का।

ऐसली बद मन रॉस वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो।

आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खानदान और संगीत दिया है रवि ने, गीतकार हैं राजेंद्र किशन।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ है गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ। आपसे थोड़ी देर में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में पर्यटकों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने ढाका के बंग भवन में बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर कैसल कमाल ने उन्हें शपथ दिलाई। बांग्लादेश में संसद में मतदान के माध्यम से अंतिम राष्ट्रपति चुनाव 8 अक्टूबर 1991

1998 को हुआ था। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश फथेराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ नीरज को सिर्फ 9 सेंटीमीटर के अंतर से पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पुल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 0-2 से हरा दिया है। भारत की ये टूर्नामेंट में पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 3 बजे हिंदी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत को विकास की एक बड़ी उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नियमों की पूरी नीति में बदलाव ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा से साझा भविष्य की भावना में विश्वास करता आया है।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे, हर देश का भविष्य, उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है, इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। हिमाचल प्रदेश के 36 सरकारी प्रबंधन वाले मंदिरों में 1 जनवरी 2024 से 1 अगस्त 2026 के बीच करीब 419 करोड़ 88 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में बताया कि राशि मंदिरों के रखरखाव, साफ सफाई, धार्मिक कार्यक्रमों, मेलों और पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च की जाती है। यूक्रेन के मध्य हिस्से के क्रिवी री शहर में रूसी ड्रोन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 130 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार घायलों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला एक शॉपिंग मॉल को निशाना बनाकर किया गया। क्रिवी री यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की का गृहनगर है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रुमेश पथिराज ने 88.14 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर भाला फेंककर तीसरे स्थान हासिल किया। महिला हॉकी विश्व कप में दूसरे दौर के पूल मुकाबले में नीदरलैंड्स ने भारत को 2-0 से हरा दिया है। भारत की यह

में पहली हार है। नीदरलैंड्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए। युब्बी यानसेन और फ्रेडरिके माटला ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7-0 scoreline on points to clinch the world title. Earlier, Indian women wrestlers Tanu Sharma and Savita also secured silver medals, adding to India's strong showing at the championships. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 3:10 और पूरे हो गए 7 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गजल और गीत का।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थित चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप जानेंगे भद्रासन और अश्वथासन के बारे में। 5:20 पर आप देशभक्ति गीत का आनंद उठा सकते हैं। पांच बजकर 30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप नवल किशोर मलिक द्वारा गाया राग रामकली का लुत्फ उठा सकते हैं। सुबह 6 का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 6:05। छह बजकर 10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई के जरिए उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और देशों के बीच अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।

0: के बावजूद भारत को दुनिया में विकास और उम्मीद की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति और तेज 5G विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों को बिजली की लागत कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए जीवन आसान बनाने और कारोबार को सुगम बनाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत की प्रगति से वैश्विक स्थिरता भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप्स संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक आज होगी जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल होगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के खेल मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। मणिपुर में इम्फाल दीमापुर गुवाहाटी मार्ग पर लगभग 3 साल के अंतराल के बाद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में सामान्य स्थिति और आपसी संपर्क को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कुल 125 यात्रियों ने यात्रा की। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। स्लोवाकिया में चल रही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 18 वर्षीय काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम किया। काजल इससे पहले 2024 में अंडर-17 विश्व चैंपियन और 2025 में अंडर-20 विश्व चैंपियन का खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: 15 August ko मैंने लाल किले से

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को

सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारे कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान